0: If you missed part of today's global program, or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on Global on Demand and select the language program of your choice. It's that easy. Global Digital On Demand is available now.
1: पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा है।
2: ये आपके लिए छोटी सी भेंट है, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था।
1: ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, तुम क्या है आपको?
2: अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है, और फिर तुमने जो अपनापन है वो आप में नहीं।
1: आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है।

0: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
1: सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
0: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
1: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा।
0: आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, और एक बंधन को तोड़ सकता है।
1: और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही के कविता के शब्द हैं।
0: वो मेरी अधूरी कविता है।
1: पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मंजिल।
0: फूल जोड़े में लगाते लगाते थैंक यू दिया।
1: मैं तो यूं ही देख रही थी।
0: फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में।
1: हर स्त्री के जूड़े में नहीं।
0: एक बात पूछूं पूनम?
1: पूछिए।
0: थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा।
1: लेकिन आज,
0: आज आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराइयों में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं
1: और मुरझा भी जाते हैं,
0: जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है
1: और रात के अंधेरे में खो जाती है।
0: पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो।
1: इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है।
0: पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम।